0: इस यात्रा को समस्या समाधान वैवाहिक समस्या को निवारण पढ़ाई लिखाई में पड़ने समस्या को निवारण नानी बाबू को भविष्य प्रेम मित्रता पछि को दोष निवारण काल सर्प योग राशि रत्न मांगलिक योग पितृदोष जस्ता समाधान लगायत अन्य विभिन्न कार्य को लागि शुभ साइक तथा शुभ मुहूर्त निकालने कार्य का लागि समझने पड़े नाम
1: ज्योतिष तथा वास्तु परामर्श सेवा भरतपुर चितवन मोबाइल 9845175223 9806575223 पुनः फोन बाट पनि ग्रह दशा र भाग्य को बारे में जानकारी लिन सक्नुहुनेछ।
2: आफ्नो अनि आफन्तजनको भूत भविष्य र वर्तमान जान्ने कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु।

0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहाइन 97.6 मेगाहर्ज
2: खरो विषय में सरो बहस नेपाली बहस

सी एआई टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट एआई पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस एलजी लाइट्स गुड.

जी एआई टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट एआई पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस एलजी लाइफ्स गुड।

0: ओ मेज्यू नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार मेज्यू नमस्कार।
0: ल बधाई छ है, बिहे गर्न लाग्नु भएछ।
1: ल धन्यवाद धन्यवाद मेज्यू। अनि बधाईले मात्रै त पुग्दैन है मेज्यू, जनता गएर छमी नाच्नु पनि पर्छ क्या।
0: है मेज्यू, म त बिहेमा आउँदिन होला।
1: ल मेज्यू, मेरो बिहेमा किन नआउने नि?
0: किन आउने नि मेज्यू, धादिङमा एउटा राम्रो